0: फुलांच्या पाकळ्यांसारखा सर्वत्र शिंपडला जात आहे असं कानांना दिसतं. ऐकूया देव आनंद बायोग्राफी नॅरेटेड बाय ओम पुरी पार्ट 1.
1: '47 के बाद हिंदी फिल्मों पर तीन जनों का प्रभाव रहा. बड़े दिल का छोटा आदमी राज कपूर, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, पर रोमांस और दिलकश पर्सनैलिटी के लिए जो नाम सिर्फ और सिर्फ अकेला उभरा वो था देवानंद.

0: Mr. Devanand brought the difference between an actor and a star. A star who creates an enigmatic quality, a Krishna. And today, till today, he is carrying on.
1: चाहे कितनी कठिन डगर हो हम कदम बढ़ाते जाएंगे कदम बढ़ाते
2: सन 45-46 में आर्ट्स की डिग्री हाथ में लिए एक नौजवान मुंबई पहुंचा। तब तक मुंबई दुनिया के जाने माने शहर के नाम से उभर रहा था। देव साहब भी उसी स्ट्रगल से होकर गुजरे जैसे आंखों में ख्वाब लिए उन जैसे सैकड़ों और।
3: I landed in Bombay in 1943. I know where to stay. I used to stay with friends for 10 days, 7 days, then hop across to another friend. And then a few moments came. जेब में पैसा नहीं हुआ करता था, खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, फिर छोटी छोटी जॉब्स करनी भूल गया, कहाँ जॉब की है, फिर छोड़ दिया कि मेरे काम की जॉब नहीं है। देन आई टुक अप अ जॉब विद द मिलिट्री सेंसर्स एंड आई टुक अ जॉब फॉर 160 rupees a month एंड देन आई अल्टीमेटली चक दैट ऑल्सो एंड देन आई गॉट माई ब्रेक।
4: I had no training of acting because there were no academies or training schools those days. All that I've learned over the years is through trial and error.
3: But the real Devanand who came into being was in Ziddi. Ziddi was a Bombay Talkies film produced by Ashok Kumar and I had the title role.
5: He was sitting in the garden and I was in the producer. I was in. So I said, he looked very handsome young boy. I said, well, I want to work. I was working in a picture. I was in the producer. I was working in that picture, Ziddi. So I said, you do it. The producer, the director said, no, he didn't write this for you. So I said, he will do it. And he did it. This is the result
2: of Dev Sahib's capability. कि वो जल्द ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। कुछ सालों में ही उन्होंने नवकेतन के नाम से अपना बैनर भी शुरू कर दिया।
3: माई ब्रदर वॉज ही वॉज इन दून स्कूल टीचिंग एंड ही केम वांटेड टू बी ए फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन। आई वॉज ग्रोइंग एज इन स्टैचर एज ए स्टार सो आई सेड एंड यू नो इट वाज वेरी टफ सो आई ब्रॉट सम मनी फ्रॉम माय प्रोड्यूसर दोस टाइम एंड गिव दैट मनी टू माय ब्रदर सेड गो अहेड मेक अ फिल्म एंड ही मेड अ फिल्म कॉल्ड अफसर Navketan's first picture and Navketan was formed with me and my brother Chetan as partners.
2: उभरते कलाकारों के लिए नवकेतन वरदान साबित हुआ।

0: हालांकि बाजी इस बैनर की दूसरी ही फिल्म थी। इस फिल्म से ऐसे कई लोगों ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया जिनकी कहानियों में इस दुनिया की दास्तान बन है। उनमें से एक थे गुरुदत्त।
1: अब मैंने जब प्रभात ज्वाइन किया है तो गुरुदत्त वहां असिस्टेंट डायरेक्टर था, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो असिस्टेंट डांस डायरेक्टर एंड वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। तो दोस्त इतने जबरदस्त दोस्त बन गए थे कि जब उसने कहा कि मैं कभी फिल्म डायरेक्ट करूंगा देव तो तू मेरा हीरो होगा, और मैंने कहा कि जब मैं कभी फिल्म मेरी कंपनी होगी कभी तो मैं आपको इनवाइट करूंगा आप फिल्म बनाओ। सो आई कैप माई वर्ड, आई ब्रॉट हिम इन।

बाजी की कामयाबी ने देव साहब के जीवन को दिशा दी। जाल, 9-2-11 और CID में उन पर फिल्माए गए सुपरहिट गानों ने देव साहब को सुपरस्टार बना दिया। सुपरस्टार से एवरग्रीन सुपरस्टार बनने की ये कहानी जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नवकेतन बैनर के नगमे आज भी माहौल में नशा पैदा कर देते हैं। जमाना ब्लैक एंड व्हाइट का, बोल जो दिल को छू लें और संगीत जो सदियों तक गुनगुनाया जाए। आमतौर से माना जाता है कि जब फिल्मी संगीत अपनी खूबसूरत पहचान बना रहा था तो इसमें सबसे दिलकश तस्वीर उभरी देवानंद की।

0: It's not because I'm a sad man, it's not because I believe in sorrow, but I think Kishore ne dukhi man mein ye gana gaya tha, jo ke do minute mein compose hua aur shayad 5 minute mein uska mukhra likha gaya sahil dhan mein, dukhi man mere sun mera kehna, jahan nahi chaina wahan nahi rehna. Simple but three dimensional, go straight into your heart.
1: Dard hamara koi na jaane.
2: There never used to be a film without songs, 4 or 5 songs given to me, and all my directors used to insist, Dev, you come and have a sitting with the music director and pick your own song, own tune. I would not like to sing a song which I don't like.
3: साठ के दशक की शुरुआत तक देव साहब राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ एक त्रिकोण के आकार में उभरे. आजादी के बाद इन तीनों ने अदाकारी की एक नई शैली को जन्म दिया. 50 और 60 के दशक कई मानों में हिंदी सिनेमा के बेहतरीन साल रहे. मासूम प्रेम कहानियों की दिलकश तस्वीरों का जमाना और उनमें रची बसी देव साहब की रोमांटिक पर्सनैलिटी.

0: कई लोगों ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया है, जिनकी कहानियों में इस दुनिया की दास्तान बंद है। उनमें से एक थे गुरुदत्त।
1: अब मैंने जब अरबाज जॉन किया है तो गुरुदत्त वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर था, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो असिस्टेंट डांस डायरेक्टर, एंड वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। तो दोस्त इतने जबरदस्त दोस्त बन गए थे जब उसने कहा कि मैं कभी फिल्म डायरेक्ट करूंगा देव तो तू मेरा हीरो होगा, और मैंने कहा कि जब मैं कभी फिल्म मेरी कंपनी होगी कभी तो मैं आपको इन्वाइट करूंगा आप फिल्म बनाओ। सो आई कैप्ट माई वर्ड, आई ब्रॉट हिम इन।

बाजी की कामयाबी ने देव साहब के जीवन को दिशा दी। जाल, 9-2-11 और सीआईडी में उन पर फिल्माए गए सुपरहिट गानों ने देव साहब को सुपरस्टार बना दिया। सुपरस्टार से एवरग्रीन सुपरस्टार बनने की ये कहानी जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नवकेतन बैनर के नगमे आज भी माहौल में नशा पैदा कर देते हैं। जमाना ब्लैक एंड व्हाइट का, बोल जो दिल को छू लें और संगीत जो सदियों तक गुनगुनाया जाए। आमतौर से माना जाता है कि जब फिल्मी संगीत अपनी खूबसूरत पहचान बना रहा था तो इसमें सबसे दिलकश तस्वीर उभरी देवानंद की।

0: It's not because I'm a sad man. It's not because I believe in sorrow. But I think Kishore ने दुखी मन में ये गाना गाया था, जो कि दो मिनट में कंपोज हुआ और शायद पांच मिनट में उसका मुखड़ा लिखा गया सारी लुधियाना में। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। सिंपल बट थ्री डायमेंशनल, गो स्ट्रेट इनटू योर हार्ट।
1: दर्द हमारा कोई न जाने।
2: There never used to be a film without songs, four or five songs given to me. And all my directors used to insist, Dave, you come and have a sitting with the music director and pick your own song, own tune. I would not like to sing a song which I don't like.
3: साठ के दशक की शुरुआत तक देव साहब राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ एक त्रिकोण के आकार में उभरे। आजादी के बाद इन तीनों ने अदाकारी की एक नई शैली को जन्म दिया। 50 और 60 के दशक कई मानों में हिंदी सिनेमा के बेहतरीन साल रहे। मासूम प्रेम कहानियों की दिलकश तस्वीरों का जमाना और उनमें रची बसी देव साहब की रोमांटिक पर्सनैलिटी।